0: नजरों
1: गुड आफ्टरनून एवरीवन ना कोई बस इट्स 17 आवर्स 1 वेलकम डाउन टू मिर्ची मसाला ऑन दिस ब्यूटीफुल वेडनेसडे आफ्टरनून व्हाट आर यू गाइस अप टू

0: ये वक्त हमारी लाइफ का गोल्डन पीरियड था और हम शायद पहले ऐसे इंडियन थे जिसको लिव इन रिलेशनशिप में रहने की परमिशन उसकी
1: Welcome to the magical jungle where lovers sleeping for eternity await to come back to life.

0: जितना मुझसे प्यार करता है ना उतना पढ़ाई से करता है, तो कब का आईएएस बन गया होता।
1: मेरा तुझसे एक वादा है, तू आईएएस पे ध्यान देती रहे और मैं तुझ पे।
0: आईएएस मेरा पहला प्यार है।
1: और दूसरा
0: तुझे पता है।